रंग ही महंगो मान के तो ना मुतेरे के हो कुकतांगो अकना कुमतांगो रा पब्जारे रो इस तंगो जकारे रा इसी मुतेदा मुमना को होंगे रंग के मशूले अकरे के हो मुरु में नमु का मधुएंस अवे माकाओ ना कुंडुरुका ओ वाजी हना वाना मानो के उनका फुमु Mano kena jimu kana itacha ikunyi, ngamunga uye kadipo, uye kadana kuyuvasi wana, mano kena pichi. Haa, na wei